0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जो गड्ढा खोदता है वह उसमें गिर सकता है, जो दीवार में सेंध लगाता उसे सांप काट सकता है, जो खदान से पत्थर निकालता है उसे चोट लग सकती है, जो लकड़ियां चीरता उसे उनसे खतरा रहता है। यदि तुम भोतरे कुल्हाड़े की धार नहीं पजाते तो दुगना परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र सुनने से पहले सांप काट ले तो सपेरा क्या कर सकता है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि प्रज्ञा की कभी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसे जीवन के अनमोल धन की तरह संचित रखा जाना चाहिए। उक्त पदों में भी उपदेशक हम सबसे सदैव सजग, सचेत और सक्रिय रहने का आग्रह करता है। यदि हम सजग रहे, सचेत रहे और सक्रिय रहे तो सावधानी पूर्वक अपने कामों का संपादन कर सकेंगे। हमारे विरुद्ध कोई अनहोनी नहीं होगी, हमें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। यदि हम लापरवाह रहे तो काम हर तरह से बिगड़ सकता है। उपदेशक कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसे प्रज्ञा, विवेक और सूझबूझ के साथ अपने सभी कार्यों को निपटाना चाहिए, अन्यथा वह विफल ही रहेगा। सुलेमान ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिनमें गलत या बेवकूफी भरे काम करने वालों को दुख उठाना पड़ा। श्रोताओं, सपेरे का यही प्रयास होता है कि उसके मंत्र से सांप मुक्त हो जाए और किसी को काटे नहीं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को भी हर पल अपने जीवन पर खतरा बना हुआ नजर आता है और इसीलिए वह अनर्गल बका करता है। वह भी काटने वाले सांप की तरह ही होता है। उसके मूर्खतापूर्ण शब्द ही उसे निगल लेते हैं या उसका अनर्थ कर देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता और उतना ही बोलता है जितना जरूरी होता है। उसके मुख से निकलने वाले शब्द अर्थपूर्ण और सामने वाले के लिए लाभकारी होते हैं। उपदेशक का कहना है कि जो व्यक्ति बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा का सदुपयोग कर अपना जीवन यापन करता है वही धन्य है, वही ईश कृपा का पात्र बनता है।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक के पदों का पाठ करें, जो इस प्रकार हैं। बुद्धिमान के मुख से निकलने वाले शब्द प्रिय लगते हैं, किंतु मूर्ख की बातें उसके विनाश का कारण बनती हैं। उसके मुख से निकलने वाले शब्द मूर्खता से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनका अंत दुष्टतापूर्ण पागलपन है। मूर्ख बहुत सी बातें करते हैं, यह कोई भी नहीं जानता कि बाद में क्या होगा, और कोई भी उसे यह नहीं बता सकता कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख अपने परिश्रम से इतना थक जाता है कि उसे नगर का रास्ता भी नहीं सूझता। श्रोताओं, यहां उपदेशक ने मूर्ख व्यक्ति की प्रकृति पर प्रकाश डाला है, जो हर समय कुछ न कुछ बका करता है, हालांकि वह खुद यह नहीं जानता कि उसके कहे शब्दों का क्या असर होगा, या फिर उससे उसकी हानि होगी या लाभ होगा। उसे यह नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, बस वह अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए बकता चला जाता है। उसे भविष्य का कोई अंदाजा नहीं होता, इसीलिए वह बेधड़क कुछ भी बोलता चला जाता है, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि क्या बोल रहा है, खुद नहीं जानता कि उसके शब्दों से उसका ही अनर्थ हो सकता है। मूर्खों को दिशा या लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कि उसका कोई अर्थ नहीं, वे दिशाहीन होते हैं और खुद अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते, वे भटक जाते हैं। जबकि बुद्धिमान के शब्द प्रिय लगते हैं, क्योंकि उससे किसी का अहित नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। बाइबल आचार्य राइट लिखते हैं, मूर्ख व्यक्ति दुनियावी बहस में इतना उलझ सकता है कि वह उस चीज को भूल जाता है जिसकी आम इंसान को चिंता होती है, यानी कि घर का रास्ता। वह भटक जाता है। और तिमोथी को प्रेषित संत पॉल के पत्र का उल्लेख कर बाइबल आचार्य किडनर लिखते हैं, वे सदैव सीखना चाहते हैं किंतु सच्चाई के ज्ञान तक पहुंचने में असमर्थ ही रहते हैं। संत पॉल का ये वाक्य ऐसे लोगों की प्रकृति को दिखाता है जो बेवकूफ हैं और शहर के सबसे सीधे रास्ते पर भी रास्ता भटक जाते हैं। उनकी मूर्खता और नासमझी उनके ज्ञान का भद्दा प्रदर्शन है। श्रोताओं, प्रज्ञा और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाने के उपरांत उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 16वें और 17वें पदों में उत्तम राजा का उल्लेख कर उपदेशक कहता है, उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, जिसके सामंत प्रातः काल से ही दावत उड़ाते हैं। धन्य है वह देश जिसका राजा कुलीन है, जिसके सामंत मतवाले बनने के लिए नहीं, बल्कि बल प्राप्त करने के लिए उचित समय पर खाते और पीते हैं। श्रोताओं, इन पदों में राजा के बच्चे होने से तात्पर्य केवल उसकी उम्र से नहीं है, बल्कि उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, अर्थात जो राजा अनुभवी नहीं है, जिसका ज्ञान बच्चे के सदृश सीमित है, जिसे नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत, जिसका दिमाग परिपक्व नहीं होता, वही बच्चा होता है, भले ही उसकी उम्र जो भी हो। यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए तो उस देश पर शोक छा जाएगा, क्योंकि उसके अधीन काम करने वाले यदि मक्कार हुए तो वे उसके अज्ञान का लाभ उठाएंगे और काम करने के बजाय भोग विलास में अपना सारा समय व्यर्थ ही गंवा देंगे। इसके विपरीत यदि राजा कुलीन हुआ, यदि राजा कुशल है, ज्ञानी है और वफादार भी, तो वह देश का कार्यभार उत्तम रीति से संभाल पाएगा और प्रजा के हित में काम करेगा। उसके अधीन काम करने वाले भी उसी की तरह सब समय सजग और सचेत रहेंगे तथा देश की रक्षा को तत्पर रहेंगे। वे मतवाले बनने के लिए नहीं पिएंगे, बल्कि उचित समय पर खाएंगे और पिएंगे, ताकि समय पर बल प्राप्त कर सकें तथा देश की रक्षा कर सकें। श्रोताओं, सुलेमान खुद ब खुद समझ गया था कि समझदारी के बगैर राज्य का कार्यभार संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि जब सुलेमान इसराइल के सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र भी बहुत कम थी, इसीलिए
उसने प्रभु ईश्वर से समझदारी और विवेक का वरदान मांगा था। राजाओं के पहले ग्रंथ के तीसरे अध्याय के सातवें और नवें पदों में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूं। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने कलीसिया से कहा है कि वह टूटे परिवारों की मदद करें। लैटिन अमेरिका के लिए परमधम पीठे आयोग के साथ एक मुलाकात में पोप लियो 14वें ने लैटिन अमेरिका में कलीसिया को उन परिवारों का साथ देने के लिए बढ़ावा दिया जो नशे की लत, हिंसा या गरीबी के दर्द से गुजर रहे हैं। पोप लियो 14वें ने गुरुवार को लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल कमीशन के तत्वाधान में आयोजित एक मीटिंग में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों से मुलाकात की, जिसकी विषय वस्तु थी लैटिन अमेरिका में नशा। अपने भाषण में पोप ने इस सभा का आयोजन करने और इस क्षेत्र में मिलकर की गई कोशिशों के लिए अमेरिकी राज्यों के संगठन के साथ कमीशन के काम की सराहना की। उन्होंने उन लोगों का भी स्वागत किया जो ड्रग्स से परेशान युवाओं का साथ देने, उन्हें नशा उन्मूलन, चंगाई एवं उनके एकीकरण के लिए काम करते हैं। नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल के असर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुख एवं उम्मीद की कोई सीमा नहीं होती। सभा में एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका से आए लोग भी शामिल थे। पोप लियो ने सभा में मिले चार सेतुओं की ओर इशारा किया जो सहयोग के चार रास्ते दिखाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, कलीसिया ड्रग के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर काम करती है। उन्होंने अमेरिकी राज्यों के संगठन और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलन के साथ सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि वे लोगों को विश्वास पर आधारित समुदाय संगठन तैयार करने में मदद करते हैं। दूसरा, पोप ने कहा कि विज्ञान एवं विश्वास एक और सेतु बनाते हैं, क्योंकि कलीसिया न्यूरोसाइंस, साइकेट्री एवं पब्लिक हेल्थ के साथ मुकाबला करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा, बल्कि वह इंसान की पूरी समझ के जरिए उस पर सुसमाचार की रोशनी डालना चाहती है। तीसरा, कलीसिया सभी महादेशों के बीच एक सेतु का काम करती है, क्योंकि एक जैसे लक्ष्य रखने वाले लोग अपनी तकलीफें, उम्मीदें और प्रेरितिक उत्साह साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। चौथा, कलीसिया और दूसरे कलीसियाई समुदाय विश्वास को एक आम भाषा की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे नशे की लत से परेशान लोगों के लिए स्नेह प्रकट किया जा सके। पोप लियो ने परिवार की अहमियत पर जोर दिया। इससे घरेलू कलीसिया कहा, जो नशे की लत से लड़ने की कोशिशों के हर पहलू में शामिल है। उन्होंने कहा, परिवार वह जगह है जहां जीवन का पालन पोषण होता है, उसकी देखभाल की जाती और उससे दिशा दी जाती है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ एक अच्छे परिवार से बेहतर कोई बचाव नहीं है। जैसा कि पोप फ्रांसिस ने कहा है, कलीसिया मानव के दुख को छूना चाहती है, दूसरों के दुखद शरीर का स्पर्श करना चाहती है। आगे पोप लियो ने दुख जताते हुए कहा, आज हम कई टूटे परिवारों की तकलीफ देख रहे हैं, चाहे वह नशीले पदार्थों के सेवन, हिंसा, किसी बच्चे के अपराध के कारण जेल, गरीबी या अवसर की कमी के कारण हो, लोगों को हाशिए में ढकेल देती है। और अंत में संत पापा ने लैटिन अमेरिका के लिए परमधम पीठे आयोग एवं नशे की लत के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के काम को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, कलीसिया उन सभी लोगों का परिवार बने जो सड़क किनारे रह रहे हैं। आइए हम एक ऐसी कलीसिया बनाएं जो रुके, पास आए, दया से भर जाए, जख्मों पर मरहम लगाए, भोजन दे एवं एक घर बन जाए। पोप लियो 14वें ने नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से हुई जान माल के नुकसान पर दुख जताया है। पोप लियो 14वें ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई जान माल की क्षति और बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर गहरा दुख जताया है। गुरुवार को भेजे गए एवं वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक टेलीग्राम संदेश में पोप ने मरने वालों की आत्माओं को ईश्वर की दया को सपोर्ट किया है और दुखी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों को अपनी आध्यात्मिक सामीप्य का भरोसा दिलाया है और चल रहे खोज एवं बचाव अभियान में लगे आपातकालीन बचाव दल के लिए प्रार्थना की है। नेपाल में करीब 165 लोगों की मौत हो गई, जबकि 800 से ज्यादा लोग लापता हैं, क्योंकि देश की उत्तरी सीमा के पास चीन से लगी बस्तियों में पानी, कीचड़ और मलबे की भयंकर बाढ़ आ गई।
पड़ोसी देश तिब्बत में सैकड़ों लोग लापता हैं, जिससे प्रभावित इलाके में लापता लोगों की कुल संख्या लगभग 1,500 हो गई है। माना जा रहा है कि यह आपदा हिमालय के एक ग्लेशियर के एक हिस्से के ढहने से हुई, जिससे नेपाल चीन सीमा पर नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। विशेषज्ञों ने कहा कि ढहने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि शुरू में इसके झटकों को भूकंप समझ लिया गया था। बाढ़ से पूरी बस्तियां पानी में डूब गई हैं, जबकि सड़कें, पुल, बिजली के प्लांट और दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाएं तबाह हो गई हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बाढ़ ने एक बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग को भी प्रभावित किया है, जिससे ट्रांसपोर्ट एवं ट्रेड मार्ग कट गए हैं। लापता लोगों में कई विदेशी टूरिस्ट भी हैं, जो कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा पर इस इलाके में आए थे। रूस में अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन वैटिकन विदेश सचिव ने मॉस्को के प्राधिधर्म अध्यक्ष पीठ मुक्तिदाता क्रिस्त महागिरजाघर का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में वोलोकोल्मास के महाधर्म अध्यक्ष एंटनी से मुलाकात की थी। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्म अध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर ने मॉस्को मिशन के दूसरे दिन रूसी संघ की राजधानी में मुक्तिदाता ख्रिस्त के ऑर्थोडॉक्स महागिरजाघर का दौरा किया। महाधर्म अध्यक्ष गलाघर का स्वागत मॉस्को के प्राधिधर्म अध्यक्षालय के उप विदेश सचिव महायाजक इगोर याकिमचुक ने किया। शरद ऋतु के बावजूद मुक्तिदाता ख्रिस्त के महागिरजाघर ने मॉस्को में अपने मिशन पर आए वैटिकन के प्रतिनिधि का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रेरितिक राजदूत महाधर्म अध्यक्ष जोआने दी अन्येलो के साथ उन्होंने एक घंटे से ज्यादा समय तक चले गाइडेड टूर में हिस्सा लिया, जिसके अंत में पूजा स्थल की शानदार छतों से रूसी राजधानी के खूबसूरत नजारे देखे। हालांकि मुक्तिदाता ख्रिस्त के महागिरजाघर को सन 1812 में बनाया जाना था, जब जार अलेक्जेंडर प्रथम चाहते थे कि इससे नेपोलियन के हमले से रूस की मुक्ति की खुशी मनाने के लिए मुक्तिदाता ख्रिस्त को समर्पित किया जाए, लेकिन इसका निर्माण 1860 तक शुरू नहीं हुआ था। वहां सबसे पहले जार अलेक्जेंडर तृतीय को 1883 में ताज पहनाया गया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 8 से लेकर 11 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि प्रज्ञा की कभी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसे जीवन के अनमोल धन की तरह संचित रखा जाना चाहिए। उक्त पदों में भी उपदेशक हम सबसे सदैव सजग, सचेत और सक्रिय रहने का आग्रह करता है। यदि हम सजग रहे, सचेत रहे और सक्रिय रहे तो सावधानी पूर्वक अपने कामों का संपादन कर सकेंगे, हमारे विरुद्ध कोई अनहोनी नहीं होगी, हमें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। यदि हम लापरवाह रहे तो काम हर तरह से बिगड़ सकता है। उपदेशक कहता है, बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। यदि व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसे प्रज्ञा, विवेक और सूझबूझ के साथ अपने सभी कार्यों को निपटाना चाहिए, अन्यथा वह विफल ही रहेगा। सुलेमान ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिनमें गलत या बेवकूफी भरे काम करने वालों को दुख उठाना पड़ा। श्रोताओं, सपेरे का यही प्रयास होता है कि उसके मंत्र से सांप मुक्त हो जाए और किसी को काटे नहीं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को भी हर पल अपने जीवन पर खतरा बना हुआ नजर आता है और इसीलिए वह अनर्गल बका करता है। वह भी काटने वाले सांप की तरह ही होता है, उसके मूर्खतापूर्ण शब्द ही उसे निगल लेते हैं या उसका अनर्थ कर देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता और उतना ही बोलता है जितना जरूरी होता है। उसके मुख से निकलने वाले शब्द अर्थपूर्ण और सामने वाले के लिए लाभकारी होते हैं। उपदेशक का कहना है कि जो व्यक्ति बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा का सदुपयोग कर अपना जीवन यापन करता है वही धन्य है, वही ईश कृपा का पात्र बनता है।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक के पदों का पाठ करें, जो इस प्रकार हैं। बुद्धिमान के मुख से निकलने वाले शब्द प्रिय लगते हैं, किंतु मूर्ख की बातें उसके विनाश का कारण बनती हैं। उसके मुख से निकलने वाले शब्द मूर्खता से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनका अंत दुष्टतापूर्ण पागलपन है। मूर्ख बहुत सी बातें करते हैं, यह कोई भी नहीं जानता कि बाद में क्या होगा, और कोई भी उसे यह नहीं बता सकता कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख अपने परिश्रम से इतना थक जाता है कि उसे नगर का रास्ता भी नहीं सूझता। श्रोताओं, यहां उपदेशक ने मूर्ख व्यक्ति की प्रकृति पर प्रकाश डाला है, जो हर समय कुछ न कुछ बका करता है, हालांकि वह खुद यह नहीं जानता कि उसके कहे शब्दों का क्या असर होगा, या फिर उससे उसकी हानि होगी या लाभ होगा। उसे यह नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, बस वह अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए बकता चला जाता है। उसे भविष्य का कोई अंदाजा नहीं होता, इसीलिए वह बेधड़क कुछ भी बोलता चला जाता है, क्योंकि वह खुद नहीं जानता कि क्या बोल रहा है, खुद नहीं जानता कि उसके शब्दों से उसका ही अनर्थ हो सकता है। मूर्खों को दिशा या लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कि उसका कोई अर्थ नहीं, वे दिशाहीन होते हैं और खुद अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते, वे भटक जाते हैं। जबकि बुद्धिमान के शब्द प्रिय लगते हैं, क्योंकि उससे किसी का अहित नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। बाइबल आचार्य राइट लिखते हैं, मूर्ख व्यक्ति दुनियावी बहस में इतना उलझ सकता है कि वह उस चीज को भूल जाता है जिसकी आम इंसान को चिंता होती है, यानी कि घर का रास्ता। वह भटक जाता है। और तिमोथी को प्रेषित संत पॉल के पत्र का उल्लेख कर बाइबल आचार्य किडनर लिखते हैं, वे सदैव सीखना चाहते हैं, किंतु सच्चाई के ज्ञान तक पहुंचने में असमर्थ ही रहते हैं। संत पॉल का ये वाक्य ऐसे लोगों की प्रकृति को दिखाता है जो बेवकूफ हैं और शहर के सबसे सीधे रास्ते पर भी रास्ता भटक जाते हैं। उनकी मूर्खता और नासमझी

उनके ज्ञान का भद्दा प्रदर्शन है। श्रोताओं, प्रज्ञा और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाने के उपरांत उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 16वें और 17वें पदों में उत्तम राजा का उल्लेख कर उपदेशक कहता है, उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, जिसके सामंत प्रातः काल से ही दावत उड़ाते हैं। धन्य है वह देश जिसका राजा कुलीन है, जिसके सामंत मतवाले बनने के लिए नहीं बल्कि बल प्राप्त करने के लिए उचित समय पर खाते और पीते हैं। श्रोताओं, इन पदों में राजा के बच्चे होने से तात्पर्य केवल उसकी उम्र से नहीं है बल्कि उस देश पर शोक जिसका राजा बच्चा है, अर्थात जो राजा अनुभवी नहीं है, जिसका ज्ञान बच्चे के सदृश सीमित है, जिसे नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत, जिसका दिमाग परिपक्व नहीं होता, वही बच्चा होता है भले ही उसकी उम्र जो भी हो। यदि ऐसे व्यक्ति को राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए तो उस देश पर शोक छा जाएगा, क्योंकि उसके अधीन काम करने वाले यदि मक्कार हुए तो वे उसके अज्ञान का लाभ उठाएंगे और काम करने के बजाय भोग विलास में अपना सारा समय व्यर्थ ही गंवा देंगे। इसके विपरीत यदि राजा कुलीन हुआ, यदि राजा कुशल है, ज्ञानी है और वफादार भी, तो वह देश का कार्यभार उत्तम रीति से संभाल पाएगा और प्रजा के हित में काम करेगा। उसके अधीन काम करने वाले भी उसी की तरह सब समय सजग और सचेत रहेंगे तथा देश की रक्षा को तत्पर रहेंगे। वे मतवाले बनने के लिए नहीं पिएंगे बल्कि उचित समय पर खाएंगे और पिएंगे, ताकि समय पर बल प्राप्त कर सकें तथा देश की रक्षा कर सकें। श्रोताओं, सुलेमान खुद ब खुद समझ गया था कि समझदारी के बगैर राज्य का कार्यभार संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि जब सुलेमान इसराइल के सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र भी बहुत कम थी। इसीलिए उसने प्रभु ईश्वर से समझदारी और विवेक का वरदान मांगा था। राजाओं के पहले ग्रंथ के 3रे अध्याय के 7वें और 9वें पदों में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूं, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने कलीसिया से कहा है कि वह टूटे परिवारों की मदद करें। लैटिन अमेरिका के लिए परमधम पीठे आयोग के साथ एक मुलाकात में पोप लियो 14वें ने लैटिन अमेरिका में कलीसिया को उन परिवारों का साथ देने के लिए बढ़ावा दिया जो नशे की लत, हिंसा या गरीबी के दर्द से गुजर रहे हैं। पोप लियो 14वें ने गुरुवार को लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल कमीशन के तत्वाधान में आयोजित एक मीटिंग में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों से मुलाकात की, जिसकी विषय वस्तु थी लैटिन अमेरिका में नशा। अपने भाषण में पोप ने इस सभा का आयोजन करने और इस क्षेत्र में मिलकर की गई कोशिशों के लिए अमेरिकी राज्यों के संगठन के साथ कमीशन के काम की सराहना की। उन्होंने उन लोगों का भी स्वागत किया जो ड्रग्स से परेशान युवाओं का साथ देने, उन्हें नशा उन्मूलन, चंगाई एवं उनके एकीकरण के लिए काम करते हैं। नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल के असर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुख एवं उम्मीद की कोई सीमा नहीं होती। सभा में एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका से आए लोग भी शामिल थे। पोप लियो ने सभा में मिले चार सेतुओं की ओर इशारा किया जो सहयोग के चार रास्ते दिखाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, कलीसिया ड्रग के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर काम करती है। उन्होंने अमेरिकी राज्यों के संगठन और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलन के साथ सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि वे लोगों को विश्वास पर आधारित समुदाय संगठन तैयार करने में मदद करते हैं। दूसरा, पोप ने कहा कि विज्ञान एवं विश्वास एक और सेतु बनाते हैं, क्योंकि कलीसिया न्यूरोसाइंस, साइकेट्री एवं पब्लिक हेल्थ के साथ मुकाबला करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा, बल्कि वह इंसान की पूरी समझ के जरिए उस पर सुसमाचार की रोशनी डालना चाहती है। तीसरा, कलीसिया सभी महादेशों के बीच एक सेतु का काम करती है, क्योंकि एक जैसे लक्ष्य रखने वाले लोग अपनी तकलीफें, उम्मीदें और प्रेरितिक उत्साह साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। चौथा, कलीसिया और दूसरे कलीसियाई समुदाय विश्वास को एक आम भाषा की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे नशे की लत से परेशान लोगों के लिए स्नेह प्रकट किया जा सके। पोप लियो ने परिवार की अहमियत पर जोर दिया। इससे घरेलू कलीसिया कहा, जो नशे की लत से लड़ने की कोशिशों के हर पहलू में शामिल है। उन्होंने कहा, परिवार वह जगह है जहां जीवन का पालन पोषण होता है, उसकी देखभाल की जाती और उसे दिशा दी जाती है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ एक अच्छे परिवार से बेहतर कोई बचाव नहीं है। जैसा कि पोप फ्रांसिस ने कहा है, कलीसिया मानव के दुख को छूना चाहती है, दूसरों के दुखते शरीर का स्पर्श करना चाहती है। आगे पोप लियो ने दुख जताते हुए कहा, आज हम कई टूटे परिवारों की तकलीफ देख रहे हैं, चाहे वह नशीले पदार्थों के सेवन, हिंसा, किसी बच्चे के अपराध के कारण जेल, गरीबी या अवसर की कमी के कारण हो, लोगों को हाशिए में ढकेल देती है। और अंत में संत पापा ने लैटिन अमेरिका के लिए परमधम पीठे आयोग एवं नशे की लत के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के काम को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, कलीसिया उन सभी लोगों का परिवार बने जो सड़क किनारे रह रहे हैं। आइए हम एक ऐसी कलीसिया बनाएं जो रुके, पास आए, दया से भर जाए, जख्मों पर मरहम लगाए, भोजन दे एवं एक घर बन जाए। पोप लियो 14वें ने नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से हुई जान माल के नुकसान पर दुख जताया है। पोप लियो 14वें ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई जान माल की क्षति और बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर गहरा दुख जताया है। गुरुवार को भेजे गए एवं वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक टेलीग्राम संदेश में पोप ने मरने वालों की आत्माओं को ईश्वर की दया को सपोर्ट किया है और दुखी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों को अपनी आध्यात्मिक सामीप्य का भरोसा दिलाया है और चल रहे खोज एवं बचाव अभियान में लगे आपातकालीन बचाव दल के लिए प्रार्थना की है। नेपाल में करीब 165 लोगों की मौत हो गई, जबकि 800 से ज्यादा लोग लापता हैं।
क्योंकि देश की उत्तरी सीमा के पास चीन से लगी बस्तियों में पानी, कीचड़ और मलबे की भयंकर बाढ़ आ गई। पड़ोसी देश तिब्बत में सैकड़ों लोग लापता हैं, जिससे प्रभावित इलाके में लापता लोगों की कुल संख्या लगभग 1,500 हो गई है। माना जा रहा है कि यह आपदा हिमालय के एक ग्लेशियर के एक हिस्से के ढहने से हुई, जिससे नेपाल चीन सीमा पर नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। विशेषज्ञों ने कहा कि ढहने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि शुरू में इसके झटकों को भूकंप समझ लिया गया था। बाढ़ से पूरी बस्तियां पानी में डूब गई हैं, जबकि सड़कें, पुल, बिजली के प्लांट और दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाएं तबाह हो गई हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बाढ़ ने एक बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग को भी प्रभावित किया है, जिससे ट्रांसपोर्ट एवं ट्रेड मार्ग कट गए हैं। लापता लोगों में कई विदेशी टूरिस्ट भी हैं, जो कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील की तीर्थ यात्रा पर इस इलाके में आए थे। रूस में अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन वैटिकन विदेश सचिव ने मॉस्को के प्रतिधर्म अध्यक्ष पीठ मुक्तिदाता ख्रिस्त महागिरजाघर का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में वोलोकोल्मास्क के महाधर्म अध्यक्ष एंटनी से मुलाकात की थी। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्म अध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर ने मॉस्को मिशन के दूसरे दिन रूसी संघ की राजधानी में मुक्तिदाता ख्रिस्त के ऑर्थोडॉक्स महागिरजाघर का दौरा किया। महाधर्म अध्यक्ष गलाघर का स्वागत मॉस्को के प्राधिधर्म अध्यक्षालय के उप विदेश सचिव महायाजक इगोर याकिमचुक ने किया। शरद ऋतु के बावजूद मुक्तिदाता ख्रिस्त के महागिरजाघर ने मॉस्को में अपने मिशन पर आए वैटिकन के प्रतिनिधि का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रेरितिक राजदूत महाधर्म अध्यक्ष जोआने दी अन्येलो के साथ उन्होंने एक घंटे से ज्यादा समय तक चले गाइडेड टूर में हिस्सा लिया, जिसके अंत में पूजा स्थल की शानदार छतों से रूसी राजधानी के खूबसूरत नजारे देखे। हालांकि मुक्तिदाता ख्रिस्त के महागिरजाघर को सन 1812 में बनाया जाना था, जब जार अलेक्जेंडर प्रथम चाहते थे कि इससे नेपोलियन के हमले से रूस की मुक्ति की खुशी मनाने के लिए मुक्तिदाता ख्रिस्त को समर्पित किया जाए, लेकिन इसका निर्माण 1860 तक शुरू नहीं हुआ था। वहां सबसे पहले जार अलेक्जेंडर तृतीय को 1883 में ताज पहनाया गया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया।

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु येसु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, नेपाल के भाटेकोशी नदी में बुधवार 26 अगस्त को आई बाढ़ ने 3 जिलों में भारी तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 165 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी पर्यटकों समेत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। बाढ़ उस समय आई जब एक हिमस्खलन ने भाटेकोशी नदी की सहायक नदी लेहेंदे का बहाव रोक दिया। इसके बाद बाढ़ सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुआगढ़ी के नजदीक तिमोरे में पहुंची। सैकड़ों लोगों की आबादी वाले इस इलाके का बड़ा हिस्सा बह गया और इसके बाद बाढ़ का पानी नीचे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बताया कि प्रभावित लोगों तक आपात राहत पहुंचाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ओचा ने बताया कि बाढ़ में बस्तियां, बाजार, सड़कें, पुल और जल विद्युत ढांचे बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आपात राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बताया कि यूएन के केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से शुरुआती तौर पर $20 लाख जारी किए गए हैं, ताकि आपात चिकित्सा सेवा, आश्रय और पानी उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि यूएन एजेंसियां और मानवीय सहायता साझीदार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यवाही में मदद कर रहे हैं और जरूरत बढ़ने पर अतिरिक्त मदद के लिए भी तैयार हैं। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार लगभग 10,000 परिवारों को तत्काल राहत सहायता की जरूरत है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप की घोषणा को 100 दिन हो चुके हैं और महामारी अभूतपूर्व स्तर पर फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि देश के पूर्वी हिस्सों व सीमाओं के पार संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास और तेज करने होंगे। प्रकोप अब 6 प्रांतों तक फैल चुका है। इतुरी इसका केंद्र बना हुआ है, जहां करीब 85% मामले और 79% मौतें दर्ज की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समन्वय समूह ICG इबोला से प्रभावित और जोखिम वाले समुदाय की सुरक्षा के लिए DRC को एवेरबो टीके की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराएगा। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: DR कांगो में इबोला का अब तक का सबसे घातक प्रकोप तेजी से फैल रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मई में प्रकोप घोषित होने के बाद से अब तक 5,290 लोग संक्रमित हुए हैं और 2,516 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ इबोला समन्वयक जूलियन हानिस ने चेतावनी दी है कि राहत कार्रवाई के लिए धनराशि केवल अगले कुछ हफ्तों तक की ही बची है। उनके अनुसार हर देरी से ये प्रकोप और घातक होता जा रहा है। अब तक 160 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं और 43 की मौत हुई है। पूर्वी DR कांगो में हिंसक टकराव, विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समन्वय समूह इबोला से निपटने के लिए एवेरबो टीके की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराएगा। इनमें से 20,000 खुराकें क्लिनिकल परीक्षण के लिए और 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रखी गई हैं। WHO ने कहा है कि ये वैश्विक एकजुटता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, हालांकि बुंडी बुग्यो प्रकार के खिलाफ इस टीके की प्रभावशीलता अभी स्पष्ट नहीं है।
2: यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों के साथ युद्ध और घातक होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ओचा के अनुसार अप्रैल 2022 के बाद अगस्त यूक्रेनी नागरिकों के लिए सबसे घातक महीना रहा। स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने इन हमलों की कड़ी निंदा की। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर रूसी मिसाइल हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई और 40 से अधिक घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमलों की कड़ी निंदा की है। रिहायशी इमारतों के साथ एक स्कूल, बच्चों का अस्पताल और बालवाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूएन ने कहा है कि आम लोगों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। यूक्रेन में मौजूद संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा, टॉम फ्लेचर कह रहे हैं कि इस मिशन के दौरान मैंने घातक नई तकनीक और युद्ध के खतरनाक मेल का असर करीब से देखा। मैंने अग्रिम मोर्चे के पास रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ जाना, जहां समुदाय एक बेहद कठिन सर्दी की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर के शब्द। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता के लिए वित्तीय सहयोग जारी रहना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा जरूरत इस युद्ध को समाप्त करने की है। संयुक्त राष्ट्र ने पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की अपील दोहराई है।
2: गाजा, लेबनान और पश्चिमी तट में बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। 2 वर्ष तक चले इसराइल हमास युद्ध को रोकने वाली अक्टूबर 2025 की अंतिम युद्ध विराम योजना के बावजूद गाजा में लगभग हर दिन इसराइली हमले, गोलाबारी और मिसाइल प्रहार और हवाई हमले जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिंसक टकराव के कारण विस्थापित हुए लगभग 8,60,000 लोग अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन विस्थापन और मानवीय संकट की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।

0: करने में बाधाएं बनी हुई हैं। इस बीच मलबे से निकाले गए 50 फलस्तीनियों के शवों को दफनाया गया है, जिनमें 19 बच्चे भी थे। यूएन साझेदारों ने गाजा में 3,250 से अधिक जोखिम वाले स्थलों पर कीट नियंत्रण अभियान भी चलाया है। लेबनान में यूनिफिल ने इसराइल द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन, हवाई हमलों और बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किए जाने की जानकारी दी है। पश्चिमी तट में नई अवैध इसराइली बस्तियों, सैन्य अभियानों और बढ़ती हिंसा पर भी संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। महासचिव ने इसराइल से बस्ती विस्तार रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका से वैटिकन पधारे सेंट विंसेंट दे पॉल को समर्पित धर्म समाजी पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों के प्रतिनिधियों का शुक्रवार को अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कहा कि प्रार्थना और सामाजिक न्याय को अलग नहीं किया जा सकता। संपूर्ण अमेरिका में धर्म समाज के सेवा कार्यों की सराहना कर संत पापा ने कहा कि धर्म समाज के सदस्य अपनी उदार सेवाओं द्वारा इस पृथ्वी पर ईश राज्य के निर्माण और ईश्वर में विश्वास का शानदार साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना का आग्रह करते हुए संत पापा ने सदस्यों से कहा, मैं आपको प्रभु ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए प्रोत्साहन देता हूं, ताकि उनकी कृपा आपकी सेवा को रास्ता दिखाती रहे और उसे मजबूत करती रहे। विंसेंट डी पॉल ने दिखाया कि प्रार्थना और सामाजिक न्याय सिर्फ एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि वास्तव में एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इसलिए मेरी आशा है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलकर उनसे मदद मांगने के लिए लगातार अपने स्वर्गीय संरक्षक की ओर मुड़ेंगे। अपने विश्व पत्र दिलेक्सी ते का उल्लेख कर संत पापा ने कहा कि संत अगस्टिन ने निर्धनों और दीन दुखियों की सेवा और देखभाल की ख्रीस्त केंद्रित प्रकृति का पाठ सिखाया और यह माना कि जो लोग गरीबों की सेवा करते हैं उनके प्रति ईश्वर उदारता में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा विश्वास है कि जब प्रेम से दूसरों की देखभाल की जाती है तो इससे न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि सेवा करने वाले का दिल भी ईश कृपा के प्रति खुल जाता है। संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदैव खुद को अर्पित कर दें। इस तरह प्रभु की कृपा आपके मनोमस्तिष्क को अनवरत शुद्ध करेगी और आप

अपने पड़ोसी में यीशु मसीह को अधिक आसानी से पहचान पाएंगे, उन लोगों में जिनकी आप सेवा करते हैं और जिनके साथ आप काम करते हैं। संत पापा ने कहा, स्मरण रखें कि मेरी प्रार्थनाएं सदैव आपके साथ और उन सब लोगों के साथ हैं जिनकी आप देखभाल करते हैं। संत विंसेंट डी पॉल धर्म समाज के सदस्यों पर मां मरियम की मध्यस्थता की याचना कर संत पापा ने सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लातिनी अमेरिका में मादक पदार्थों की आसक्ति के शिकार लोगों पर रोम में 25 से 27 तक संपन्न एक सम्मेलन के प्रतिभागियों ने गुरुवार को संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। नशे की लत और युवाओं की आपराधिक भर्ती को संबोधित करने हेतु लैटिन अमेरिका और करीबियाई देशों के प्रतिनिधि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ मिले तथा विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसमें विशेष रूप से मादक पदार्थों से आसक्त लोगों के लिए रोकथाम, स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक एकीकरण पर विशद चिंतन किया गया। लातिनी अमेरिका और करीबियाई देशों के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ तथा लातिनी अमेरिका के लिए परम धर्म पीठीय मिशन एवं जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित कर संत पापा ने कहा कि किसी चीज का नशा या आसक्ति एक मुश्किल तथ्य है जो यह दर्शाता है कि इंसानियत को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह विश्व की नाकामी का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि युवाओं की पीड़ा को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्युत्तर की आवश्यकता है। समुदाय में रोकथाम, वैज्ञानिक सहायता, इंसानियत के साथ न्याय और उनके सबसे करीबी लोगों की देखभाल। उन्होंने कहा कि हमारा योगदान देखभाल, मौजूदगी और समुदाय की संरचना को फिर से बनाने की ओर होना चाहिए। संत पापा ने कहा कि मादक पदार्थों और उससे जुड़ी बुराइयों का सामना कोई भी अकेले रहकर नहीं कर सकता। इसके लिए कलीसिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों को मिलकर काम करना होगा। नशे की लत और इससे जुड़े अपराधों की रोकथाम हेतु लातिनी अमेरिका के कैथोलिक धर्माध्यक्षों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग की संत पापा लियो ने सराहना की। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आसक्ति की समस्या के समाधान हेतु कलीसिया और गैर सरकारी संगठनों के सेवा कार्यों के साथ विज्ञान और विश्वास के मध्य सेतु निर्माण की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया मादक पदार्थों की समस्या पर हस्तक्षेप तंत्रिका विज्ञान, मनोचिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य या जगह लेने के उद्देश्य से नहीं करती, बल्कि वह सुसमाचार से प्रेरित समाधानों को सुझाने के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आसक्ति संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए स्वयं कलीसिया के अंतर्गत तथा कैथोलिक कलीसिया के साथ अन्य ख्रिस्तीय संप्रदायों के सहयोग और समन्वय की नितांत आवश्यकता है। साथ ही युवाओं को उनकी जरूरतों और सपनों में साथ देने तथा जोड़ने के लिए एक सही और उपयुक्त आम भाषा का उपयोग करना आवश्यक है, तभी इस समस्या का हल ढूंढा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि द्वितीय वैटिकन महासभा ने परिवार की महत्ता का उल्लेख कर इसे घरेलू कलीसिया का नाम दिया है, जिसका सम्मान किया जाना तथा जिसे टूटने से बचाना हमारा प्राथमिक कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए परिवार प्रेरिताई पर ध्यान दिया जाए ताकि माता पिताओं के व्यस्त जीवन में बच्चे और युवा गलत रास्तों पर न भटक जाएं। संत पापा लियो 14वें 28 सितंबर को फ्रांस के मेट्स शहर की प्रेरिति की यात्रा करेंगे। इस यात्रा की पृष्ठभूमि में मेट्स के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष फिलिप बलो ने वैटिकन मीडिया से बातचीत कर बताया कि संपूर्ण शहर संत पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आगामी 25 से 28 सितंबर तक संत पापा लियो 14वें फ्रांस की प्रेरिति की यात्रा करने वाले हैं। पेरिस महाधर्म प्रांत तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संगठन की भेंट के उपरांत 28 सितंबर को संत पापा फ्रांस और जर्मनी की सीमा के बीच स्थित मेट्स शहर का दौरा करेंगे। महाधर्माध्यक्ष फिलिप बलो ने कहा कि उन्हें मोजेल और मेट्स के निवासियों के इतिहास को देखते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व महसूस हुआ। यह एक ऐसी धरती है जिसने 3 युद्ध, 2 विश्व युद्ध और 2 बार कब्जा झेला है और जो आज खुद को मेल मिलाप और भाईचारे की जमी के रूप में प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हैं, वे लड़ने के बजाय मिलकर काम कर रहे हैं।
महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि जर्मनी के साथ संबंध अति मधुर हैं, इसलिए यहाँ संत पापा का आगमन एक बहुत मजबूत संदेश है। उन्होंने कहा कि मेट्स के लोग संत पापा लियो के स्वागत को अति उत्सुक हैं, जिन्होंने अपने परमाधीक्षी काल की शुरुआत से ही निशस्त्र और निरस्त्रीकरण शांति पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही हम शांति के पुरुष और शांति निर्माता बनने का प्रयास कर रहे हैं और संत पापा लियो की यात्रा इस उद्यम में हमें साहस प्रदान करेगी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, नेपाल के भाटेकोशी नदी में बुधवार 26 अगस्त को आई बाढ़ ने 3 जिलों में भारी तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 165 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी पर्यटकों समेत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। बाढ़ उस समय आई जब एक हिमस्खलन ने भाटेकोशी नदी की सहायक नदी लेहेंदे का बहाव रोक दिया। इसके बाद बाढ़ सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुआगढ़ी के नज़दीक तिमोरे में पहुंची। सैकड़ों लोगों की आबादी वाले इस इलाके का बड़ा हिस्सा बह गया और इसके बाद बाढ़ का पानी नीचे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बताया कि प्रभावित लोगों तक आपात राहत पहुंचाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ओचा ने बताया कि बाढ़ में बस्तियां, बाजार, सड़कें, पुल और जल विद्युत ढांचे बह गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आपात राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बताया कि यूएन के केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष से शुरुआती तौर पर $20 लाख जारी किए गए हैं, ताकि आपात चिकित्सा सेवा, आश्रय और पानी उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने बताया कि यूएन एजेंसियां और मानवीय सहायता साझीदार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यवाही में मदद कर रहे हैं और जरूरत बढ़ने पर अतिरिक्त मदद के लिए भी तैयार हैं। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार लगभग 10,000 परिवारों को तत्काल राहत सहायता की जरूरत है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप की घोषणा को 100 दिन हो चुके हैं और महामारी अभूतपूर्व स्तर पर फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि देश के पूर्वी हिस्सों व सीमाओं के पार संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास और तेज करने होंगे। प्रकोप अब 6 प्रांतों तक फैल चुका है। इतुरी इसका केंद्र बना हुआ है, जहां करीब 85% मामले और 79% मौतें दर्ज की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समन्वय समूह ICG इबोला से प्रभावित और जोखिम वाले समुदाय की सुरक्षा के लिए DRC को एवेरबो टीके की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराएगा। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: DR कांगो में इबोला का अब तक का सबसे घातक प्रकोप तेजी से फैल रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मई में प्रकोप घोषित होने के बाद से अब तक 5,290 लोग संक्रमित हुए हैं और 2,516 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ इबोला समन्वयक जूलियन हानिस ने चेतावनी दी है कि राहत कार्रवाई के लिए धनराशि केवल अगले कुछ हफ्तों तक की ही बची है। उनके अनुसार हर देरी से ये प्रकोप और घातक होता जा रहा है। अब तक 160 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं और 43 की मौत हुई है। पूर्वी DR कांगो में हिंसक टकराव, विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समन्वय समूह इबोला से निपटने के लिए एवेरबो टीके की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराएगा। इनमें से 20,000 खुराकें क्लिनिकल परीक्षण के लिए और 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रखी गई हैं। WHO ने कहा है कि ये वैश्विक एकजुटता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, हालांकि बुंडी बुग्यो प्रकार के खिलाफ इस टीके की प्रभावशीलता अभी स्पष्ट नहीं है।
2: यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों के साथ युद्ध और घातक होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ओचा के अनुसार अप्रैल 2022 के बाद अगस्त यूक्रेनी नागरिकों के लिए सबसे घातक महीना रहा। स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने इन हमलों की कड़ी निंदा की। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर रूसी मिसाइल हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई और 40 से अधिक घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमलों की कड़ी निंदा की है। रिहायशी इमारतों के साथ एक स्कूल, बच्चों का अस्पताल और बालवाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूएन ने कहा है कि आम लोगों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। यूक्रेन में मौजूद संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा, टॉम फ्लेचर कह रहे हैं कि इस मिशन के दौरान मैंने घातक नई तकनीक और युद्ध के खतरनाक मेल का असर करीब से देखा। मैंने अग्रिम मोर्चे के पास रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ जाना, जहां समुदाय एक बेहद कठिन सर्दी की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर के शब्द। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता के लिए वित्तीय सहयोग जारी रहना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा जरूरत इस युद्ध को समाप्त करने की है। संयुक्त राष्ट्र ने पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की अपील दोहराई है।
2: गाजा, लेबनान और पश्चिमी तट में बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। 2 वर्ष तक चले इसराइल हमास युद्ध को रोकने वाली अक्टूबर 2025 की अंतिम युद्ध विराम योजना के बावजूद गाजा में लगभग हर दिन इसराइली हमले, गोलाबारी और मिसाइल प्रहार और हवाई हमले जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि दक्षिणी लेबनान में हिंसक टकराव के कारण विस्थापित हुए लगभग 8,60,000 लोग अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन विस्थापन और मानवीय संकट की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: गाजा, लेबनान और कब्जे वाले पश्चिमी तट में बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई है। यूएन एजेंसियों के अनुसार गाजा की 21 लाख आबादी में से 94% लोगों को आश्रय की जरूरत है। अधिकतर परिवार तंबुओं या अस्थायी ढांचों में रह रहे हैं, जहां ईंधन, बिजली और बुनियादी घरेलू सामान की भी भारी कमी है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा है कि इजरायली पाबंदियों के कारण आश्रय सामग्री, भारी मशीनरी और अन्य जरूरी सामान गाजा पहुंचाने में बाधाएं बनी हुई हैं। इस बीच मलबे से निकाले गए 50 फलस्तीनियों के शवों को दफनाया गया है, जिनमें 19 बच्चे भी थे। यूएन साझेदारों ने गाजा में 3,250 से अधिक जोखिम वाले स्थलों पर कीट नियंत्रण अभियान भी चलाया है। लेबनान में यूनिफिल ने इसराइल द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन, हवाई हमलों और बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किए जाने की जानकारी दी है। पश्चिमी तट में नई अवैध इजरायली बस्तियों, सैन्य अभियानों और बढ़ती हिंसा पर भी संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। महासचिव ने इसराइल से बस्ती विस्तार रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका से वैटिकन पधारे सेंट विंसेंट दे पॉल को समर्पित धर्म समाजी पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों के प्रतिनिधियों का शुक्रवार को अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कहा कि प्रार्थना और सामाजिक न्याय को अलग नहीं किया जा सकता। संपूर्ण अमेरिका में धर्म समाज के सेवा कार्यों की सराहना कर संत पापा ने कहा कि धर्म समाज के सदस्य अपनी उदार सेवाओं द्वारा इस पृथ्वी पर ईश राज्य के निर्माण और ईश्वर में विश्वास का शानदार साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना का आग्रह करते हुए संत पापा ने सदस्यों से कहा, मैं आपको प्रभु ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए प्रोत्साहन देता हूं, ताकि उनकी कृपा आपकी सेवा को रास्ता दिखाती रहे और उसे मजबूत करती रहे। विंसेंट दे पॉल ने दिखाया कि प्रार्थना और सामाजिक न्याय सिर्फ एक दूसरे के पूरक नहीं है, बल्कि वास्तव में एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इसलिए मेरी आशा है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलकर उनसे मदद मांगने के लिए लगातार अपने स्वर्गीय संरक्षक की ओर मुड़ेंगे। अपने विश्व पत्र दिलेक्सी ते का उल्लेख कर संत पापा ने कहा कि संत अगस्टिन ने निर्धनों और दीन दुखियों की सेवा और देखभाल की ख्रीस्त केंद्रित प्रकृति का पाठ सिखाया और यह माना कि जो लोग गरीबों की सेवा करते हैं उनके प्रति ईश्वर उदारता में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा विश्वास है कि जब प्रेम से दूसरों की देखभाल की जाती है तो इससे न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि सेवा करने वाले का दिल भी ईश कृपा के प्रति खुल जाता है। संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदैव खुद को अर्पित कर दें। इस तरह प्रभु की कृपा आपके मनोमस्तिष्क को अनवरत शुद्ध करेगी और आप अपने पड़ोसी में यीशु मसीह को अधिक आसानी से पहचान पाएंगे, उन लोगों में जिनकी आप सेवा करते हैं और जिनके साथ आप काम करते हैं। संत पापा ने कहा, स्मरण रखें कि मेरी प्रार्थनाएं सदैव आपके साथ और उन सब लोगों के साथ हैं जिनकी आप देखभाल करते हैं। संत विंसेंट दे पॉल धर्म समाज के सदस्यों पर मां मरियम की मध्यस्थता की याचना कर संत पापा ने सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लातिनी अमेरिका में मादक पदार्थों की आसक्ति के शिकार लोगों पर रोम में 25 से 27 तक संपन्न एक सम्मेलन के प्रतिभागियों ने गुरुवार को संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। नशे की लत और युवाओं की आपराधिक भर्ती को संबोधित करने हेतु लैटिन अमेरिका और करीबियाई देशों के प्रतिनिधि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ मिले तथा विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसमें विशेष रूप से मादक पदार्थों से आसक्त लोगों के लिए रोकथाम, स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक एकीकरण पर विशद चिंतन किया गया। लातिनी अमेरिका और करीबियाई देशों के कैथोलिक धर्माधिक्षीय सम्मेलनों के संघ तथा लातिनी अमेरिका के लिए परम धर्म पीठीय मिशन एवं जीवन संबंधी परम धर्म पीठीय अकादमी ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित कर संत पापा ने कहा कि किसी चीज का नशा या आसक्ति एक मुश्किल तथ्य है जो यह दर्शाता है कि इंसानियत को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह विश्व की नाकामी का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि युवाओं की पीड़ा को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्युत्तर की आवश्यकता है। समुदाय में रोकथाम, वैज्ञानिक सहायता, इंसानियत के साथ न्याय और उनके सबसे करीबी लोगों की देखभाल। उन्होंने कहा कि हमारा योगदान देखभाल, मौजूदगी और समुदाय की संरचना को फिर से बनाने की ओर होना चाहिए। संत पापा ने कहा कि मादक पदार्थों और उससे जुड़ी बुराइयों का सामना कोई भी अकेले रहकर नहीं कर सकता। इसके लिए कलीसिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों को मिलकर काम करना होगा। नशे की लत और इससे जुड़े अपराधों की रोकथाम हेतु लातिनी अमेरिका के कैथोलिक धर्माध्यक्षों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग की संत पापा लियो ने सराहना की। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आसक्ति की समस्या के समाधान हेतु कलीसिया और गैर सरकारी संगठनों के सेवा कार्यों के साथ विज्ञान और विश्वास के मध्य सेतु निर्माण की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया मादक पदार्थों की समस्या पर हस्तक्षेप तंत्रिका विज्ञान, मनोचिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य या जगह लेने के उद्देश्य से नहीं करती, बल्कि वह सुसमाचार से प्रेरित समाधानों को सुझाने के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करती है।
उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आसक्ति संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए स्वयं कलीसिया के अंतर्गत तथा कैथोलिक कलीसिया के साथ अन्य ख्रिस्तीय संप्रदायों के सहयोग और समन्वय की नितांत आवश्यकता है। साथ ही युवाओं को उनकी जरूरतों और सपनों में साथ देने तथा जोड़ने के लिए एक सही और उपयुक्त आम भाषा का उपयोग करना आवश्यक है, तभी इस समस्या का हल ढूंढा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि द्वितीय वैटिकन महासभा ने परिवार की महत्ता का उल्लेख कर इसे घरेलू कलीसिया का नाम दिया है, जिसका सम्मान किया जाना तथा जिसे टूटने से बचाना हमारा प्राथमिक कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए परिवार प्रेरिताई पर ध्यान दिया जाए, ताकि माता पिताओं के व्यस्त जीवन में बच्चे और युवा गलत रास्तों पर न भटक जाएं। संत पापा लियो 14वें 28 सितंबर को फ्रांस के मेत्स शहर की प्रेरिति की यात्रा करेंगे। इस यात्रा की पृष्ठभूमि में मेत्स के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष फिलिप बलो ने वैटिकन मीडिया से बातचीत कर बताया कि संपूर्ण शहर संत पापा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आगामी 25 से 28 सितंबर तक संत पापा लियो 14वें फ्रांस की प्रेरित की यात्रा करने वाले हैं। पेरिस महाधर्म प्रांत तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संगठन की भेंट के उपरांत 28 सितंबर को संत पापा फ्रांस और जर्मनी की सीमा के बीच स्थित मेत्स शहर का दौरा करेंगे। महाधर्माध्यक्ष फिलिप बलो ने कहा कि उन्हें मोजेल और मेत्स के निवासियों के इतिहास को देखते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व महसूस हुआ। यह एक ऐसी धरती है जिसने 3 युद्ध, 2 विश्व युद्ध और 2 बार कब्जा झेला है, और जो आज खुद को मेल मिलाप और भाईचारे की जमीन के रूप में प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हैं, वे लड़ने के बजाय मिलकर काम कर रहे हैं। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि जर्मनी के साथ संबंध अति मधुर हैं, इसलिए यहाँ संत पापा का आगमन एक बहुत मजबूत संदेश है। उन्होंने कहा कि मेत्स के लोग संत पापा लियो के स्वागत को अति उत्सुक हैं, जिन्होंने अपने परमाधीक्षे काल की शुरुआत से ही निशस्त्र और निरस्त्रीकरण शांति पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही हम शांति के पुरुष और शांति निर्माता बनने का प्रयास कर रहे हैं, और संत पापा लियो की यात्रा इस उद्यम में हमें साहस प्रदान करेगी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।